0: सूचना सूचना सूचना
1: कन्सल्टेन्ट इन्डोक्राइनोलोजिस्ट एमबीबीएस एमडी इन्डोक्राइनोलोजी एन्ड मेटाबोलिजम डाक्टर कृष्ण ऐरी इसान मेडिकल हल टिकापुरमा यही साउन 23 गते चौथो शनिबारका दिन बिरामी चेक जाँच गर्न आउँदै हुनुहुन्छ।
0: निम्न समस्याहरू:
1: सुगर रोग,
0: गर्भकालीन मधुमेह,
1: महिलाको शरीरमा अनावश्यक रौँ बढ्ने,
0: सुगर रोगका कारणले हुने समस्या जस्तै खुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, दिन तथा रातमा पटक पटक पिसाब लाग्ने, मुख सुक्ने, तिर्खा लाग्ने,
1: थाइराइड कम जस्तै थकान लाग्ने, तौल बढ्ने, छाला सुक्खा हुने, कपाल झर्ने, अनुहार फुल्ने, चिसो बढी लाग्ने,
0: थाइराइड बढी जस्तै तौल घट्ने, धड्कन बढ्ने, पसिना धेरै आउने, निन्द्रा नलाग्ने, हात कामने, चिचिडापन, आँखा फुलेर बाहिर आउने,
1: कम उमेरमा पनि प्रेसर, मोटोपन, कोलेस्ट्रोल बढ्ने,
0: उमेर अनुसार शरीरको उचाइ नबढ्ने वा धेरै अग्लो हुने, महिनावारीमा गडबडी र यौन इच्छामा कमी हुने। के तपाईँले निम्न मध्येका कुनै समस्या त छैन? छ भने इसान मेडिकल हलमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9852431 31 र 9860114000। डाक्टर आउने समय प्रत्येक महिनाको चौथो शनिबार बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। सम्पर्क स्थान इसान मेडिकल हल, टिकापुर 1, कैलाली।
2: याद गर्नुहोस्, जाँच गर्नुपर्ने बिरामी खाली पेटमा आउनु पर्नेछ। बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमहे उक्रा सम्पर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली। फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9842423।

0: नेपालमा
1: पाजेना बिखा सापनको विषयमा सुन एक ठोर गरैचा जोन खास कै रातिक समयमा घरभित्र बैठ सेक्छ यी कटलसे निबठाई फे स्याकट तर कटलक पाछ डे भाग जो निचलना कै सास फ्यार जो निसेकना मेसे लक्क होइ सेक्छ और रठ डोम जोन बडा रिसाहा मेरिक रठ निकर फाट फुले थ डोम साप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना ओ खास कै संध्या बिहान देख पर्छ निकर कटलसे फे लक्क होइ सेक्छ ओ और रठ कैरी जातक साप निकर कटल कलसे कटलक भाग सुई था ओ बड़ा कर्र से बठे था रकत थे पाती रोकर रकत बहना हुई से था उसे का हमारे देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोक ने न फुनकाराना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिंक न कटाई एकदम खतरनाक रहा
2: बर्खा छा को अनाज बिथिना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना धीर बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नाश विदेश सापन का दसाई का घटना धीर बिना कर लग पा जाए
3: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वह फिर यदि सब पर दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन

0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
0: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई को। यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था, तोर समस्या फेन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
0: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी ही जाए।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला, यौन, कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आज कहा हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान के ना झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अभी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरलो से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आप बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 3 0 0
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 3 0 0 98 6 56 92 0 26

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से स्तनपान बारे दाय हुक्रा सचेत बंटी। टीकापुर अस्पताल में स्तनपान कक्ष नहीं हो, हरेक कार्यालय में स्तनपान कक्ष आवश्यक। आगामी 3 दिन में देश के तमाम स्थान में भारी पानी पर्न संभावना, सतर्कता अपनाइन मौसमविद के आग्रह। पशुपतिनाथ आधारभूत विद्यालय के विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यशाला गोष्ठी ओरायलो, रानी कुला जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष में वीर बहादुर खत्री चयन। स्तनपान बचाओ दाई मनन के पोषण और स्वास्थ्य के लाख महत्वपूर्ण मान जाए। स्तनपान के बारे में दाई और बच्चा के परिवार सदस्य हुकरा सचेत होना आवश्यक बा। पासक समय में दाई हुकरा स्तनपान सचेत समेत बंटी गैल बाट मनो 6 महीना सम पूर्ण स्तनपान कराई पर्ना कहना दाई तथा सचेत हुईती गैलक परिवार सदस्य और कार्यालय प्रमुख हुकरा फिर सचेत हुई परत। हरेक कार्यालय में स्तनपान कक्ष व्यवस्था करना आवश्यक बा। 1 वर्ष आगे कैलाली के सुविका श्रेष्ठा के जुमलेहा बच्चा जलम लेहल रहे। 28 हप्ता में 1 केजी 200 ग्राम कैल्समेट टॉल बच्चा जन्मल पाछे। करीब 1 महीना वहां के कोहलपुर में 9000 शिशु सघन उपचार कक्ष में धरपरल रह। 1 ठो बच्चा जोगैना नहीं सकने और बच्चा हुर्कैना वहां के दम्पटी हुकरन के एकदम मेहनत कर परल। बच्चा जन्म लेलक 1 महीना अस्पताल के बसाई पाछे घर लान गेल और धीरे से अपन दूध चुसैना करते रहलक। बच्चा के सहार परिवार के सदस्य श्रीमान से मजा सहयोग पुगल पाछे सुविका के बच्चा अब स्वस्थ रहल बा। मीना उपाध्याय फे अब 45 दिन के बच्चा बाटिन। वहां के बच्चा फे जन्म लेलक समय में 1 किलो 900 ग्राम केल रह। शल्य क्रिया मार्फत जन्म लेलक वहां के बच्चा फे सहार में एकदम मेहनत कर पड़ती रहल बा। 45 दिन में 3 केजी 200 ग्राम तौल पुगे परत। वहां के फे समेत स्तनपान के मात्रा करती रहल बाटे। जानकी गांव पालिका की गोलौरी के मौसम चौधरी के 6 महीना के बच्चा बा 6 महीना संपूर्ण स्तनपान करायल पाछे वहां आजकल दाल झोल उसके जाउलो लिटो खुवती रहल बाटे। वहां बच्चा के सेहार में वहां के श्रीमान रामकृष्ण चौधरी फे मजा साथ देहल बाटे। टीकापुर की रमिला चौधरी दूसरा बच्चा हुर्कैती बाटे। स्तनपान के मजा ज्ञान रलक रमिला से दोनों बच्चा है स्तनपान थप खाना सरसफाई सेहार बारे सचेत करायल बाटे। हरिकला जोशी से फे 9 महीना के बच्चा बा 6 महीना सम स्तनपान केल करायल वहां अब्बा थप खाना खैना चीज समेत खुवाइत रहल बाटे। हरिकला के बच्चा सेहारो घराइसी काम में परिवार सबको जाने मिलके करती रहल बाटे। मीना ठगुन्ना के 9 महीना के बच्चा बा वहां भर 4 महीना में समेत बसाई मन से समेत बाजार मन 4 महीना में बाजार में पैना फल फूल दूध खुवाइती बाटे। टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर समेत रलक स्वास्थ्य संस्थान में टीकापुर अस्पताल के बाल बालिका के पोषण सुधार के लग उपचारात्मक तरीका खाना खुवाइना करती रहल बा। शीघ्र कुपोषण रलक उपचार चाहलक बच्चा हुकरन टीकापुर अस्पताल में होना ओ समेत भर्ना नहीं करके उपचार करे पर्ना रलक सेती अस्पताल धनगढ़ी पठाई पड़ती रहल बा। विगत में हेरना हो कल से दाई स्तनपान बच्चा के पोषण में सचेत बंटी गैल बाटे। स्वास्थ्य संस्था में खोप लगाइना बच्चा के अनिवार्य वृद्धि अनुगमन समेत करना हो समस्या समेत रल से उपचार करते रहल बाटे। चालू आर्थिक वर्ष में बसम अस्पताल में 200 बाल बालिका ढेर रेफर करगिल बा। 2 जना अब्बसम उपचारात्मक तैयारी खाना खैती बाटे। समाज में अबिन फे समेत पासनी के गलत बुझाई रलक हो बच्चा 6 महीना नई पुग्ती खाना खुवाइना अभ्यास समेत रलक। टीकापुर अस्पताल नर्सिंग निरीक्षक तथा पोषण संपर्क व्यक्ति नीलम रावल बतैले बाटे। दायो बच्चा के निरोगी हुईकलाक स्वास्थ्य कलक स्तनपान महत्वपूर्ण बा। स्तनपान अनिवार्य रहलक ओर से हरेक कार्यालय में स्तनपान कक्षा आवश्यक रहल हो। स्तनपान में फिर समेत सहज वातावरण बना दिना टीकापुर अस्पताल के सीनियर अनमी तारक खरेल के कहा बा। टीकापुर तीन शंकरपुर स्थित पशुपतिनाथ आधारभूत विद्यालय के विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यशाला गोष्ठी ओरालबा विद्यालय में विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में टीकापुर नगरपालिका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थी प्रमुख अतिथि रहल रहे। गोष्ठी में सिकाई उपलब्धि वृद्धि करकलाक विद्यालय में विद्यार्थी संख्या वृद्धि करना त्रैमासिक रूप में अभिभावक भेटघाट हो अंतरक्रिया कार्यक्रम करती जैनाओ स्थानीय स्रोत साधन के ढेर उपयोग करके शिक्षण में समेत करना समेत लगायत के सुझाव अति रहल बा। कार्यशाला गोष्ठी में आयल सुझाव फेस समेत विद्यालय सुधार योजना में समावेश करके कार्यान्वयन करती जैनाओ विद्यालय के अवस्था सुधार करती जैना विद्यालय के प्रधानाध्यापक तेज बहादुर बोहरा जानकारी दिल बाटिन। खोजखर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएन ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि।
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट एक वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली।
3: ल यति छिटो आमा बन्न लागेको त
4: थाहा पाउँदैछु यस्तो अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन
3: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
7: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
6: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर। भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको धड्कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको नजिकै टीकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। हाल मनसुनी वायु के प्रभाव रलक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनाइल बा। मनसून की न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थान से फिर कुछ उत्तर पंजाब लंग नेपाल की तराई भूभाग लग रहल बा, जिससे देश के तमाम स्थान में वर्षा हुई रहल बा। अब फिर देश के तमाम स्थान में वर्षा हुई रलक पूर्वानुमान महाशाखा से जनाइल बा। 5-6 घंटा में सबसे ढेर झापा में 80.2 मिलीलीटर वर्षा मापन करल बा। ओसह ओकर पाछे जाजरकोट में 45 मिलीलीटर, दैलेख में 28 मिलीलीटर, सुर्खेत में 14.2 मिलीलीटर वर्षा मापन करल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनाइल बा। अन्य स्थान में फिर हल्का से लैके मध्यम पानी पड़ते रहल महाशाखा से जनाइल बा। अब मनसून सक्रिय रहला ओर से आगामी 3 दिन हे फे समेत हल्का से लैके भारी वर्षा के संभावना देगिल मौसमविद रोजन लामिछाने जानकारी देले बाटे। मनसून जारी रहला ओर से देश के तमाम स्थान में पानी पर्ना क्रम चलते रहला को वर्षा होके सचेत समेत हुईलो बैठना फे समेत नागर शुक्रन समेत आग्रह करला सचेत होके बैठे पर्ना आग्रह करल बाट। रानीकुलो जल उपभोक्ता संस्था के 19वां वार्षिक साधारण सभा बन से लाव नेतृत्व चयन हुई बा। अध्यक्ष पद के लाख हुई मतदान में वीरबहादुर खत्री निर्विरोध निर्वाचित हुई बाट। खत्री 85 मत पायल बाट। कलश और अध्यक्ष के ओर के उम्मीदवार टेक बहादुर रावल 28 मत प्राप्त करल बाट। संस्था के उपाध्यक्ष डम्बर घरती मगर, सचिव में फूलराम चौधरी, कोषाध्यक्ष में विष्णु कुमारी खत्री, सहसचिव में कन्हैयालाल चौधरी लगायत के 21 जन के कार्य समिति निर्विरोध चयन करगिल निर्वाचन अधिकृत परशुराम महतो जानकारी देले बाटे। कुलवा के समय मासमिक पद में रह के काम करलक खत्री अध्यक्ष में निर्वाचित हो सकल पाछे 40 साल एहर से लेके मरम्मत करना बाकी रानी कुलवा के काम तदारुकता के साथ करैना बटेले बाटे। कुलवा ढेर कुलवा रलक ओर से असिगे ढुवानी क्षेत्राफे रानी कुलवा समेत रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना के दोसरो चरण के काम नई ओरैती ढेर काम बाकी रहलो। यहाँ 11 वर्ष फे रानी कुला के अध्यक्ष होके समेत श्रीपाल चौधरी के अगुवाई में संगसंगे काम करल बतागिल बा। सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय महत्व के विषय में आधारित चलचित्र निर्माण हे प्रोत्साहन करना उद्देश्य से सरकार से लन्न लागलक सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र में चलचित्र निर्माण के लग प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम संबंधी कार्यविधि 2083 के मसौदा ऊपर सरकार वाला हुकन संगे छलफल कर दिलवा। सूचना तथा संचार मंत्रालय में समेत आयोजित अंतर क्रिया में चलचित्र क्षेत्र में संबंधित तमाम संस्था चलचित्र निर्माता निर्देशक कलाकार तथा विज्ञ हुकरण के सहभागिता रहल चलचित्र क्षेत्र में प्रोत्साहन करना चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 के लग विनियोजन करगिलक रूटीन करोड़ 50 लाख अनुदान रकम पारदर्शी प्रभावकारी उपलब्धिमूलक ढंग से परिचालन करना कार्यविधि तैयार समेत करना उद्देश्य से मंत्रालय से सरकार वाला हुकरण से सुझाव लेल के हो। कार्यक्रम में सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सेना से चलचित्र क्षेत्र में विकास के सरकार से सहयोग के व्यवस्थित बनेना स्पष्ट व्यावहारिक कार्यविधि आवश्यक पर्ना बटोले चलचित्र संगे संबंधित संस्था तथा सहजकर्ता हुकरण उपलब्ध कराइना अनुदान आर्थिक सहायता रकम के बाटफाट तथा खर्च प्रक्रिया व्यवस्थित पारदर्शी प्रभावकारी नियमित बनाइना कार्यान्वयन योग्य समेत कार्यविधि आवश्यक पर्न रलक वहां के कहाइबा। संचार मंत्री डॉ तिमिल सेना से सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय महत्व के विषय समेत के यथार्थ परक मौलिक उत्कृष्ट चलचित्र निर्माण है प्रोत्साहन करना सरकार के उद्देश्य रलक उल्लेख करती अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित कर पर्नामा जोर दिले बाटै। खोज खबर में एक गरी विश्राम विश्राम पाल से फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
8: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना।
9: टिकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टिकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
8: तपसिल
9: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी,
8: बैंकको सक्कल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी,
9: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र,
8: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति,
9: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
8: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
9: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
10: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
11: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849-85-18-08।
12: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
13: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकल छु।
12: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
13: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तुम्हें अब भी जाए।
0: याद गर्मी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046477417। विश्राम पाछि फेर से स्वागत बा। संघीय सांसद के प्रतिनिधि सभा के बैठक आज दोपहर के 1 बजे बैठी बा। आज के बैठक में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सविता गौतम आदिवासी जनजाति आयोग के 6वां वार्षिक प्रतिवेदन 2081-82 पेश करना संभावित कार्यसूची रहल बा। यह बैठक में नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता भीष्मराज आंगदब्बे प्रस्तुत करना समेत जरूरी सार्वजनिक महत्व के विषय पर छलफल होना कहलबा। सांसद आंगदब्बे से वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी और अव्यवस्थित बसोबासी उकरण के पहचान करके नागरिक उकरण के संरक्षण और पुनर्स्थापना के लग सरकार से आवश्यक व्यवस्था करके सुरक्षित आवास आधारभूत सेवा खाद्य स्वास्थ्य शिक्षा और जीविकोपार्जन है निरंतरता में ध्यान देके उचित क्षतिपूर्ति के ठाई पुनर्संरचना के समेत प्रत्याभूति देना वास्तविक भूमिहीन एवं सुकुम्बासी उकरण यथाशीघ्र लाल पूर्जा वितरण कराइना आवश्यक रहले को से तमाम विषय के समेत सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव प्रस्तुत करना कहलबा। उक्त प्रस्ताव के समर्थन में सांसद शुक्रा एन बहादुर मोहर युवराज दुलाल और आरएन राय समेत रहल बाट स्थल करके आज के तमाम 500 समिति के बैठक बैठी बा। कैलाली के चूरे गांव पालिका स्थित के सासपुर घर खेदा निगाली सड़क में स्तर उन्नति के काम वन क्षेत्र भीतर रूख कटान के अनुमति नहीं पाके रुक गेल बा। असके निर्णय समेत कार्य रुक गेल संगे वर्षायाम संगे सड़क हिलम्य बनल बा। कलश स्थानीय बासिंदा से दैनिक आवागमन में सस्ती बेहोरे पर्ना बाध्यता रहल बा। पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली के अनुसार चूरे गांव पालिका 3 सहसपुर मनसे वार्ड नंबर 1 स्थित गांव पालिका के केन्द्र घर समेत खेड़ा हुईटी निगाली सम के पुगना तथा धनगढ़ी दीपायल फास्ट ट्रैक के समेत जोड़ना 14.8 किलोमीटर सड़क के स्तर उन्नति विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग में प्रादेशिक तथा स्थानीय सड़क सुधार कार्यक्रम अंतर्गत शुरू कर गेले हो। कार्यालय के इंजीनियर सूर्य प्रकाश जोशी के अनुसार उ सड़क स्तर उन्नति के लग 36,30,99,000 रूपया समेत धुकेचु एएनके से जेबी से समेत महेन्द्रनगर संगे ठेक्का समझौता हुई बता गिल बा। सुडान के दाफर क्षेत्र में हुईलक एक नागरिक अदालत में सुडानी सेना के ड्रोन आक्रमण से कमती में 35 जन के मौत हुई मानव अधिकार समूह से बता गिल बा। सुडान सन 2023 अप्रैल में अर्धसैनिक फ्रेट समेत सपोर्ट फोर्स से समेत सुडानी सेना बीच के पूर्ण युद्ध में फसलक बताया गिल बा। सशस्त्र द्वंद्वा में स्थान तथा समेत घटना तथ्यांक नामक समेत द्वंद्वा अनुगमन समूह के अनुसार कमती में 59,000 मरण के मौत हुई कहल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से स्थान पान बारे दाई सचेत बंती टीकापुर अस्पताल में स्थान पान कक्ष नहीं हो हरेक कार्यालय में स्थान पान कक्ष आवश्यक। आगामी 3 दिन में देश के कुछ स्थान में भारी पानी पर्ने संभावना सतर्कता अपनाइना मौसमविद के आग्रह। पशुपतिनाथ आधारभूत विद्यालय की विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यशाला गोष्ठी ओरायलो रानी कुलवा जलोपोक्ता संस्था के अध्यक्ष में वीरबहादुर खत्री चाहिए बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सक बिहार के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते विराम राम।

0: कहाँ सियाट एपोलो भी रबर ब्रांड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिफल जेसीबी में लगने संपूर्ण साइज का टायर सुपथ मूल्य में पाइन संजय ट्रेड एंड सप्लायर्स जमराफारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
1: संपर्क नंबर 091-560-470 र मोबाइल नंबर 98-48-57-18-28।

0: May I come in, sir?
1: आओ तू पायलट से आई ना हमारा झील कर दो था संजू कुछ समस्या तो नहीं हुई
0: कुछ नहीं हुई सर पायलट के पंद्रह सफर रखना सर लग के घुमा रहते हूँ जैसे छह साल लग में तो हलचल नहीं करें मोर सपो का कि था पहले तो पहला जाके
1: मोर सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना
0: नहीं चलेना सर
1: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा पूरा से कहो मोर सपो देखो कल से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूला से भी वाकर मरहल बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआ सपा मुआ देख पड़ना सपा है ना नंगता हाथ साले पकड़ा नहीं बीत
0: सर मुआ सपा देखना से क्या करना
1: सपा मुआ लस देख पड़ना से थे जात से मुआ नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास आसम के सपा दस सकत वह वर्ष से मुआ लबस थमा फिर सपा हाथ से चलाए नहीं बीत बेंटन इतना मल अच्छी ले चला का मुआ नहीं मुआ कहीं खजाना से भी था
2: मुआ सापन से सावधान रही मुआ मार्गी सपो है ना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासे समकी सपवा दस सिठा संभव हुई सम सपो फोटो खींची व पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
3: पर पदंग से संबंधी पर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंग से उपचार केंद्र कहाँ बाकी था पता लगे लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर सेव दिठा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे भुवा जागिने न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आतु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन लबाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाई आऊ जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41268 और 98486 39261।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउ से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटाका कई था बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस काटस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
4: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ
3: तपसिल
4: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सकल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी
3: बैंकको सकल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी
4: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र
3: नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रतिलिपि हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति
4: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
3: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो यहाँ हेर इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: यो खाने मन तो कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ
5: तते एक्लो कहाँ छ श्रेया त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु मैं पहले आपूला एक्ल समझिथे कुलत छुटे पो था पाए यह सुंदर संसार कति सुंदर रहू पर्च अनि को संसार को मजा लिख पाइन
4: हो रो तो अलग टन्न कमाई छो
5: भाई सुधार गृह में बस को बेला कस को कमाई हो जब म निस्के काम करना था अनि पो कमाई कमाई भी मेरे लिए होना हिजो मेरे कुलत में हुआ आमा रुदै रुदै जानु अब घरजम कर श्रीमती छोरा छोरी हो उन्नी सोच्ते
4: ओहो तैयले तो साँचे एक्लो हुआ भोलि को सुंदर संसार सोची सक यार अब मूलत छोड़ आमा दीदी भाई सब परिवार खुशी बनाऊ भोलि को जीवन सुंदर बनाने कोशिश कर
6: जानकी गांव पालिक 9 नंबर वड़ा कार्यालय द्वारा जनहित में जारी संदेश
0: ला फिर यो गाड़ी ने धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टीकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
7: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
7: कहाँ हुनु भाइ टीकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
8: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
9: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिप्पर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
7: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 9848578 28

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए।
1: रजनी वहाँ 62 नंबर लक्ष्य बात दिखाओ तो कैसे दिखाओ तो
2: मुर्गी दाना देना जाला मैं काकर लक्ष्य खा देती हूँ ना
1: एक तो तपा बाका मुर्गी ना खा रखे लक्ष्य से डुरेले से बक्सा की आनो हरी छत्ता
2: तापन घिसकाई चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस क्या कर बेन घर भीतर आए लागी कल से भगे दी
1: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खादी कहीं का भगाए खुद लखो का
2: आरम कीड़ा फटिंगा मुंह सांप सिर निशा कर कहीं का फलाम का जारी लगा बात तप्पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं थे की बेन अपना दासी दूर रहना
1: हो भी ना था क्या करना हो तप्पा देखती की डर नागा लगना रही था देव तप्पा तो अपन घूम का बारी वो कर गिरता
2: हमारे खेल सांपन से डरे ना नहीं बोली मुकर थे अमन से डरे था एबी क्यों जान अनजान में चले लगी पति रक्षा करत लाग व अपन बचाव करत लाग सांप दस ना कर था
3: सांपन से दूर रही सांपन रीस नहीं लगाई व नहीं जीस गई सांप मने देख कर डरे था निचलाख दूर रहलसे साप नि डस्ट तर हुक्र खैना खाज बाहिर निस्कदैन अब घाँस काटब छ्यालब ल्याङ्गब छुबेलसे मनै मही मारकलागबाट कना सबस्क पट्टि र छ्याकना क्रममा साप दसला गर्छ मनै सापन व्यक्ति कि मारकलाग रह ओसीको करब फेर साप दसला गर्छ
4: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लङ्घक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँबाटै छ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेधिथा
0: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: नहीं कमिश्नर।
1: आओ आओ, तू पायलट से आई ना हमारा ढील कर दो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
0: कुछ नहीं मिल सर, पायलट के पंद्रह सफा रख लू, सर लग के घूमत रहते हूँ, जैसे चेयर सा लग लो तो हलचल नहीं कर, मोर सपो का के छापे ना तो पहला जाके
1: मोर सपो है ना, चलेना तो नहीं चलेगा ना?
0: नहीं चलेगा सर।
1: विद्यार्थी भैया बापू पूरा मुझसे कह रहा हूँ, मोर सपो देखो कर से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूला से भी वाकर मरहल बीस असर नहीं करत कना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंग तहाँ सारे पकड़ा नहीं बीत
0: सर नौ सप्पा देखना से क्या करना
1: सप्पा मुआल देख पड़ना से थे जाग से मुआल नहीं रह सकत पतवा मुला कुछ देर पास आसम थे सप्पा दस सकत वह उससे मुआल अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाए नहीं बीत गेंद तो इतना माल अच्छी ले चला का मुआल नहीं मुआल कैसा जाना से भी था
2: मुआल सरपंच से सावधान रही मुआलवा मार गई सप्पा होना पकड़ना व खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासा संकी सप्पा दस से था संभव हुई सम सप्पो फोटो खींची व पहचान कला विज्ञान से संपर्क करी
3: सर्पदंश से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी था पता लगेगा आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org में हेर सेवा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
6: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
5: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर

जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपन के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य समादेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीका प्रेम 101 मेगाहर्ट्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम अंताक्षरी अपन गलक के सलाह के बैठक सकू रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग स्वागत के संगे अभिवादन कर चाहते मैं विषय नाम के भाई टेक में बैठ के साथ भेटे बाबू रत्नापुर मगर और भाई दीपेन्द्र दोनों जन ने आते हैं आज हमारे संगे संगे और हमारे बाटे अपने हो गए संगे संगे। तो अपने होंगे जे जहां रहे से कार्यक्रम में चाहे सहभागी जने भी सुन्न 91 5 61 2 55 अर्थात 0915 6 1 2 5 लाइन खुला भा अंताक्षरी खेले गलत गीत गायना अक्षर हल रुचि रह सब संगाली हुए क साइकिल से क का की कुकू के अ साइकिल से अ आ ई ई उ ऊ ए आई कोई भी अक्षर से चाहिए अपने हो गए मतलब अंताक्षरी खेले सकती है कार्यक्रम में सहभागी जनाई सकती है ना मैं अपने कन जानकारी करती बारू तो जे जहां हुई भी कार्यक्रम में सहभागी जनाई टेकर भी कार्यक्रम में आई कर भी अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता रही रमाइलो गप रही मौसम सुहाना बा पल घड़ी रमाइलो बा मौसम सुहाना पल घड़ी रमाइलो मौसम में चाहे अपने को हमारे रमाइलो गप बा का नाम है अपने जानकारी करते कार्यक्रम की शुरुआत में श्री गणेश कर बैठो रमाइलो गीत से गीत के बाद समय नहीं बाटो डाल करते कर भी 91 5 61 2 55 लाइन खुले हुआ तो समय एंजॉय करी ये रमाइलो गीत

इटन ई मन सप्तहारे हो बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रममा जोडली अघि कार्यक्रममा सहभागी जनाई विश्व एकानब्बे पाँच एकसठी दुई सेवा शून्य अर्थात 0915612555 लाइन एकदमै खुल्ला भयो फटाफट डायल गरी कार्यक्रममा सहभागी जनाएको लाग शून्य एकानब्बे पाँच एकसठी दुई सय पचपन्नको लाइन एकदमै खुल्ला भयो जे जहाँ खेतमे बारीमे दोकानमे मकानमे काममे धन्दामे बिजीमे विप्टालमे यात्रामे जहाँ रहनु छ पनि कार्यक्रममा सहभागी जनाइकनमा एउटा अर्जी अनुरोध और निवेदन गर्न चाहन्छु तब थाय मोबाइल और डायल गर्दै कृपया शून्य एकानब्बे पाँच एकसठी दुई सय पचपन्न अर्थात 0915612555 लाइन एकदमै खुल्ला भयो फटाफट डायल करबी और अपने को हमारे रमाइल सहभागिता रही का नाम है आपको जानकारी करती बाटू तो कार्यक्रम में चाहिए विशेष करके अपने को हमारे रमाइलो गफ रही न रही रमाइलो बातचीत हुई न रही अपने को हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनेबी कार्यक्रम में आईबी का नाम है चाहम और कार्यक्रम में चाहिए आईबी कर से विशेष करके आज के दिन चाहिए गीत गायना इच्छा रहल रुचि रहल शौक रहल कार्यक्रम हम कल करबी विशेष करके गीत गायक लग चाहिँ थारू नेपाली भोजपुरी भाषामा चाहिँ गीत गायक लग कार्यक्रममा सहभागी जनेबी कनामे आप्रोकन अर्जी कना जाम तो कार्यक्रममा चाहिँ कसैले नै हिचकिचा के मैफेन कोन काम मैफेन कार्यक्रममा आइम कना सोच बनाके कार्यक्रममा सहभागी जनेबी कनामे आप्रोकन निवेदन गर्न जाम कनामे आप्रोकन जानकारी करती कार्यक्रममा चाहिँ ठीक ठाउर गीत जोडब गीतके पाछा मैले बाटु डायल करते कर भी शून्य एकानब्बे पाँच एकसठी दुई सय पचपन्न के लाइन खुल्लैबा कनामे जानकारी करम तबसम्मको लागि एन्जॉय करी रमाइलो गीत

हजुर बेचेनिया बेखाबिया बेहोसिया एक सनम चाहे जहां रहो दिन रात में याद हर पल हर दम बिल्कुल रमाइल गीत कार्यक्रम में जोली कार्यक्रम में भरखर रेडियो खोल विकल से इहो रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz उससे के हमारे वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर एफएम एप साम्र पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत प्याप्नु के हम सुने शक्ति का नाम एप्रोकन जानकारी करती बात हूँ तो कार्यक्रम में चाहे सहभागी जनाइटे कर्वी कार्यक्रम आईटे कर्वी का नाम एप्रोकन निवेदन करम विशेष करके अपने हुकान तो अपने हुए हमारे कार्यक्रम में चाहे सहभागी जनाक बना रही 091-5-61-255 अर्थात 091-5-61-255 लाइन एकदम खुला भा कार्यक्रम में चाहे सहभागी जनाइवी काले से तो कार्यक्रम में आईवी काले से विशेष करके क साइकिल से क का की कुकु के असाइकिल से अ आ ई उ ए आई कोई भी अक्षर से चाहिए हमारे अंताक्षरी खेलना हो अपने गायल गीत मई नि गाय पाइन हो मर गायल गीत अपने नि गाय पाइन हो अपने को मर गायल गीत तेसरो पर्सन के कलर गाय नि पाइन हो चाहे कार्यक्रम के नियम हो यही नियम भीतर रह के कार्यक्रम में चाहे सहभागी जनवी काल से अपने और हमारे रमाइलो गप हुई का नाम है कहना चाहत हूँ तो फटाफट चाहे डाल करते कर भी 091-5-61-255 था 091-5-61-255 लाइन एकदम खुला हुआ कार्यक्रम भी 45 बजे से यात्रा करते कर भी सहभागी जनते कर भी तटे खाओ की जोड़ा इतके पास मैंने बार डाल करते कर भी 091-5-61-255 लाइन खुलाई बा

हजुर नुकनुके चोरी चोरी दिल मरचुरा के दिल मरचुरा के गैलो दिल धड़का के आज पहली बार सजनी हो गया तोहन से प्यार बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम में जोली अपने हुकन केलक कार्यक्रम में बात करू मैं मिशन और मीके चाहे साथ देते बाबू रत्नपुर मगर और भाई दीपेंद्र और हमरे बाटी अपने के संगे और अपने चाहिए हमारे संगे बाटी तो अपने के हमारे संगे यात्रा करी सुने 91 5 61 255 अर्थात 0915612555 लाइन एकदम खुला बा जे जहां रहे सकें कार्यक्रम में सहभागी जनईबी का मैं आप लोग का निवेदन करता हूँ कहे कि अपने और हमारे रमाइलो सहभागिता रही रमाइलो गफरी रमाइलो बातचीत ही का मैं आप लोग जानकारी करती बाटू तो फटाफट चाहिए डायल कर दी कार्यक्रम में खुजुटी नहीं हिचकिचा के गीत गैना संग कार्यक्रम के लाख विशेष करके आज के दिन गीत गैना रुचि रहल गीत गैना इच्छा रहल गीत गैना मतलब सोच बनल हुई कर से कार्यक्रम में सहभागी जनईबी 0915612555 के लाइन खुले बा तो फैंस इंजॉय कर एक छाव गीत से गीत के पास मैंने बटू डाल कर तक भी 0915612555 के लाइन खुलने पर तसम के लगकर रमाइलो कर गीत से गीत के पास मैंने बटू डाल कर तक भी 0915612555 लाइन खुलेगा।

0: हजुर अपनेहुकनका सँगै मजा मजा गीत सुन्दी बाटी हाम्रै अपनेहुकनका सँगै रमाइलो करती बाटी अपनेहुकनका सँगै आइटी बाटी अपनेहुकन सँगै पक्कै फेरि बाटी मै बाटु अपनेहुकनका सँगै और अपनेहुकन सँगै हाम्रो यात्रा करती बाटी जे जहाँ भी कार्यक्रममा सहभागी जना कोही टेलिफोन लाइनमै बाटै स्वागत गरौँ। हजुर राम राम। ओके कोही टेलिफोन लाइनमा आयल रही सायद उहाँ नै हुँ लागत मिनमै उहाँके आवाज नै आयल पक्कै फेरि आफ्नो आइटी रवि सुनै 91-5-61-200 सुनेको लाइन खुल्लै भए कानामा आफ्नो कान जानकारी कहिन चाहम। हजुर राम राम। नै है चलकै बानी कार्यक्रममा सहभागी जनाइटे कर्मी 91-5-61-200 सुनेको लाइन एकदमै खुल्ला भयो कार्यक्रममा सहभागी जनाइटे कर्मी कार्यक्रममा आइटे कर्मी सँगै पनि 91-5-61-200 सुनेको लाइनमै फेन्से कोही घन्टी बजा सकलबाटै घन्टी बजुया सँगैको फेन्से आगिलबाटै मै उहाँ किन भए एकैछिन पछि स्वागत गरौँ। पक्कै फेरि उहाँ फेन भर्खर भर्खर सायद टेलिफोन से डिस्कनेक्ट हो सकल है फेन्से कोही टेलिफोन लाइनमै आ पुगलबाटै मै उहाँ किन स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर राम राम।
1: हजुर राम राम।
0: मालु रामजी हो
1: अपने बडा बेर सुरक्षित कार्यक्रम कोही कल
0: हजुर कल तो आई थे तर बीच डगर में कहीं संपर्क टूट जाए थे का तब हमारे बात नहीं बतवा पाई थी नहीं
1: कोई कलर नहीं आया लगने बस मैं सुन के मिठाई तो मैं फोन लगा दूं
0: कच्चिया चलिए कोई बात नहीं अपने अली धन्यवाद एकदम खुशी लागल और बताए मालू राम जी कैसे बा अपने ठाव में मौसम अब भाई
1: मौसम दिन से
0: बढ़िया बढ़िया बा दिन आज घाम नहीं हो नहीं
1: आज घाम तो नहीं हो मैंने तब उन बाहर धीरे से घामे लागत
0: कौसा करती बाटी तो भाई
1: अब व्यवस्थे बैठवाती है अब भात खा खो क्या
0: रेडियो सुनती बाटी हो
1: रेडियो सुनती आती
0: है तो आज सही गीत गए ना कार्यक्रम हो जाए
1: खास तो तैयार नहीं कर रही हूँ मैंने मैं कल आज नए फिर मिठाई दिन बस मैं लगा दूंगा क्या लगा रही हूँ
0: अंताक्षरी खेले जानती कि नहीं
1: मैं वो सीख नहीं जानती हूँ
0: तो एक तो गीत सुना दी
1: एक तो गीत ही सुना के ना हो यार
0: एक तो गीत सुना दीगा तुम्हें अपने हम हन
1: और मैंने सुनाई तू हूँ
0: नहीं अपने सुनाई और जन हन का है अपने सुनाई
1: मैंने मजा गीत एक तो गाना सुना दी हुई रहे
0: अपने नहीं गई अपने नहीं गई भी तो
1: हाँ मैं अपने कलर नहीं आई थोड़ी कह के बस मशहूर के मिठाई दिन बस मैं अब कलर जा रही हूँ
0: लीली धन्यवाद कार्यक्रम में सहभागी जनैली अब एक लगता ही हमने एक गीत बजा आप अपने के करके करना हो ले भी
1: अब दे वो है हमार गोमा देवी साड़ी
0: अब एक लग विदा हुई राम राम वहाँ फोन कर ले रहे मालू राम जी रमाइलो गप फिर वहाँ से
2: हमने गप कर ली और अपने के फिर हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनते कर भी सुनने का ना भी 5-61-200 के लाइन खुले अठे गीत जोड़ा गीत के पास में नहीं बारू डाल करते कर भी सुनने का ना भी 5-61-200 लाइन खुलेगा

हजुर म त गीतकी पाचा फेन्स स्वागत गर्दी सँगै गठे पर एकैछि व्यापारिक विश्राम लेना बेला हुकुमे के सर्ट कमर्सियल ब्रेक ब्रेक के पाछ में इन्हें बाटू रेडियो छोड़कर कौन पेनाजीवी तत्सन के लगे एक घसी व्यापारिक विश्राम विश्राम के पाछ में बाटू डायल करते कर भी शून्य 91 5 61 255 के लाइन खोले तत्सन के लगे एक घसी व्यापारिक विश्राम

0: आई हो बड्डो, घर कहिया सिज जैबो? पाछ से शुरू करल मने घर सिजा सेकल।
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनेला बाट। अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना, कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मुआ का द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई लग मुआ का द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
3: ए सन्तेकी आमा, पर कान्छा खालाको बिहाको न्यू त आएको छ, कसो हो त जाने विचार छ कि नै त?
4: आफ्ना कान्छा भाइको बे नगइकन पनि भएन, जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र पन भाँची गयो।
3: यो टिका लागि त सामुएल जोलस बनेको हँ, बरु अहिलेै जाउँ, एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ।
4: आज त सन्तेका बाले मनकै बुढो हर्यो, हट त बाई जाउँ।
5: सामुएल ज्वेलर्स सुनचादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर त्यहारी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868414108, 9486349261।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटा का आज इठा का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउ से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा था
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था, कभी पेंसिल हेरा कई था, कभी झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस का टस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: आज तिमी मेरो वरीपरी किन घुम्दैछ छोरी
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
3: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
4: मेरो खुत्रके छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि
3: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
4: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
5: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स मा नया नया डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुमका छड्के तिलहरी बाला चूरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसन का गरगनारो पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98688147799 98246025। अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98246028225।

0: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाए।
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाड़, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: घर परिवार में सभी बिरानी आखिर स्वस्थ रहो ना, स्वस्थ व्यवहार पनि त अपनाउनु पर्यो। तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकला सुकाय हुन्छ र कहिले कोही बिरामी, कहिले कोही बिरामी, म त दिक्क भइसक्यो। कसो कालले छिटो नलाग्यो
5: मैले चाहिने जो माइलो के बरबर बरबर कराइरहेको छ, के भएको छ तँलाई?
4: हेर्नु न, साह्रै समस्या पर्यो क्या। कहिले के रोग आउने, कहिले के समस्या आउने, म त हैरान भइसकेँ। छोरो उस्तै बिरामी छ, स्कुल जान पाएको छ, त्यत्रो दिन थन्किया छ, बा त्यत्रै बिरामी, सबै हैरान भने म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ, भोक लागे लागे हुन्छ, खानै सक्दैन।
5: तेरी माइला, यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ? त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो।
6: हजुर, स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्, साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्।
7: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर, ठकरला रोड, टिकापुर, कैलाली।

0: नहीं कमी सर।
1: आओ आओ तू पायलट से आई ना हमारा झील कर दो था संजू कुछ समस्या तो नहीं हुई।
0: कुछ नहीं हुई सर, पायलट के 15 सफवा रख लू सर लग के घूमत रहते हूँ जैसे चेयर से लग लू तो हलचल नहीं कर मोर सब के था पहले तो पायलट जाके
1: मोर सब को ना चलेना तो नहीं चलेगा ना
0: नहीं चलेगा सर।
1: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा मुझसे कह रहा हूँ मुझे सबको देखो कर से वही ना चलाए नहीं बिठा तब मुला से भी वाकर में रहल बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआ सपा मुआ ना देख पड़ना सपा है ना नंग तो हाथ से पकड़ा नहीं भी
0: सर मुआ सपा देखना से क्या करना
1: सपा मुआ ना देख पड़ना से थे जात से मुआ नहीं रह सकत पकवा मुला कुछ देर पास असम थे सपा दस सकत वह उससे मुआ अवस्था में फिर सपा हाथ से चलाए नहीं भी बेन तो इतना मल अच्छी ले चला था मुआ नहीं मुआ कहीं का जाना सीखी था
2: मुआ सापन से सावधान रही मुआ मार्गी सपोहना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बास संगी सपवा दस सिट्ठा संभव हुई सम सबको फोटो खींची व पहचान कला विज्ञान से संपर्क करी
3: सर्पदंग से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंग से उपचार केन्द्र कहाँ बाकी पता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सीखा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
6: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
7: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
6: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
7: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
8: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmctikapur@gmail.com।
9: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा के खोज खबरों में अपने को स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम अपने उग्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हम पात्र नेपाली पात्र मफी सुन्ती धलवाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर में फिर चितुआ के आतंक अब थारू गांव हरे पूजा हुई थी हरेरी पूजा धान में लगना रोग किरा हटना मान्यता दौलतपुर घाट के झुरुंगे पुल पुनः संचाल में भार अनुसार पुल में आव जावत करना निर्माण कंपनी के आग्रह वो कप्तान गज घटना घाइते मेहता के उपचार के क्रम में मृत्यु टीकापुर में फिर चितुआ के आतंक शुरू हिलवा चितुआ के सावन 17 गते रात के टीकापुर नगरपालिका एक शक्तिनगर 2 नंबर टोल में खसी मार दिवस फिर 18 थो गई रात के 3 नंबर टोल में बंगुर खा दिलवा टोल नंबर 3 के फिरिया चौधरी अपन बंगुर में चितुआ खलक दिलक दुखी हुईबाटी आज रात के शक्तिनगर के 2 नंबर टोल में राजकुमारी चौधरी फे खसी फे चितुआ मार दिल रहा नजिक बनो मसे हरेक रात चितुआ ईना लागल पास कछिक बासना हो के चिंता भरल स्थानीय

0: फूलमती चौधरी बोटिलोबाटी स्थानीय आन्दरपादर पञ्च राम डंगौरा कैलाशेश्वर बन्नुमसे मुक्त कमैया बस्तीकी बासिन्दा घाँस काठी नै पहिला कुहामसे ऐना चितुवाके बारम्बार नोक्सान गर्तिरहल गुनासो कलबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मसे बेला बेलामा कर्णाली स्याकी निकुञ्ज आन्दर आर पार्क कि सामुदायिक बनामा बाघ गैंडा हठिया ऐना गर्दा चितुवाकी विगत वर्षमा फे सत्ती कर्णाली बनुवा शीतल सामुदायिक बनुवा जनक शक्ति सामुदायिक बनुवा टीकापुर बहुप्राविधिक शिक्षालय लगायतकी क्षेत्रमा घर पाल भुवा जनावर मर्ला रही वन सब डिभिजन कार्यालय टीकापुरके वन अधिकृत दिलीप कुमार यादव यही क्षेत्रमा वनमसी जनावरको गतिविधि बहलक बुटिलबाट गत वर्ष फेरि टीकापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा निरन्तर चितुवा आइलपा छ चितुवा खोरमा फसाकी निकुञ्ज पुगिल रही थारू समुदाय अब हरेरी पूजा कर्तिहलबाट खास गरी थारू समुदायमै पूजा साउन महिनामा गर्थ थारू समुदायमा गाउँ घरके मनाई रकम संकलन गर्थ संकलन हुइलक रकम पूजा सामग्री किन्न हो देवी देवता चढ़िना गर्थ हरेरी पूजा के बिहानके गाउँमा थनुवामा जाके पूजा गर्न चलनमा हरेरी पूजा कृष्ण भगवान गौरा पार्वती पाँच पाण्डव भीम लगायतकी देवताकी पूजा गर्न टीकापुर पाँच ललितपुरके गुरुवा फुलुराम फूलराम चौधरी बोटिलोबाट सामूहिक रूपमा थनुहामा पूजा गरलवा छ गाउँभरके कृषक मन्त्रलक धूपो दूध पानी वितरण गर्थ गाउँके कृषक वितरण करलक धूपो दूध पानी आफ्नो खेतमा जैना चलन रहलवा सख पूजा करलक धूप धुपैना दूध पानी खेतमा जाके डर्ना हो लगलक रोग किरा हट्ना जैना जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर आठ खैरीपुरके गुरुवा तेसना डंगोरा चौधरी बोटिलोबाट हरेरी पूजा थारू समुदायकी लन्नाकसँग मेलमिलाप सामाजिक सद्भाव कायम धरना वातावरण सह छुइना कनाउ परम्परागत पूजा धान उत्पादनमा वृद्धि हुना थारू समुदायकी विश्वास रहल अहिलेवा धानमा किरा लग्न मसे बचैना उत्पादन मसे वृद्धि हुना विश्वास हरेरी पूजा गर्न कर्थ हो टीकापुर चार बाघमारा के जोखनलाल चौधरी बोटिलोबाट खेती गर्न शुरूआत संकलक हरेरी पूजा गर्न चलन चल्ती अलेवा यही संघ गाउँमा रोग व्याधि हो नै लागोस् के लगैलग धान लगायत अन्य बालीमा किरा नै लागोस् के यही पूजा गर्न कलक थारू अगुवा जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर आठ जंगबहादुर चौधरी बोटेलोबाट हस्तकर्के पूजा समुदायमा एकता लन्ना संघ परम्परा फे जोगना वा आत्मसन्तुष्टि फे मिल्ना हुलक पूजा गर्न मजा बाठो हरेरी पूजाके दिन हरियर घाँस काट्न नै हुना ढिकी जातो चराई नै हुना मान्यता रहलवा पूजाके दिनमा असिन क्रियाकलाप अशुभ हुना जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर नौ कामना बहादुर चौधरी बोटेलोबाट हरेरी पूजाके सन्ध्या ओहर गाउँभरके पुरूष एक ठाउँमा जम्मा होके सामूहिक रूपमा मन्द्रा बजाके नचना पुस्त पुस्तासे चल्ती अहिलेक चलनबा गाउँके मनै फेर नै हो कि अभिन गुरुवा व गुरुवा संघ बैठना किशौका समेत बैठना गर्थ गुरुवा व किशौका फे मन्द्रा तालमा नचना गर्थ खोज खबरमा एकरी विश्राम विश्राम पासा फेर चाहिँ विश्वन्तिर विश्वामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
2: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको व्यवहार सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिस नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिस डेभलपमेन्ट स्टडिज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट एक वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाइफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष, व्यवस्थित क्यान्टिन, खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको।
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने।
1: कक्षा बाह्रको पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टिकापुर, कैलाली।
0: के तपाईलाई थाहा छ,
3: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
3: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
3: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
0: के छ त विकल्प?
3: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
3: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
4: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वार से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली। फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59।
0: दलरपुर घटोमा झुरुङ्गे पुल पुनः सञ्चालनमा आइलवा, कैलाली बर्दिया जोड्ना झुरुङ्गे पुग्न कुछ समस्या आयल पासै घप्तकला बन्द कलक पुल मर्मत पाछ सञ्चालनमा आइलवा, पुल क्याजर पाजर छोट पिल्लरमा चिरकल पाछ एक घप्तकला बन्द कलक पुल मर्मत हुल पाछ पुनः सर्वसाधारण कला खुल्ला कलक निर्माण कम्पनी थानी निर्माण सेवा जानकारी दिलावा। निर्माण कम्पनी अत्याधिक भीड़भाड़ तथा पिल्लर के आधार क्षेत्र मरलक मोड के अवस्थामा कमजोर के कारण समस्या देखल हुइसेकना प्रभावित भाकी मरमत सम्पन्न हुइटिकेल अब पुल पूर्ण रूपमा सुरक्षित रलक निर्माण कम्पनीकै विक्रम बस्नेत बोटेलोबाट। बस्नेतकी भविष्यमा अस्थ समस्या दोहोरलक प्राविधिक टोली मार्फत दिगो समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पुलमा आवश्यक भीड़ नै गर्न सर्वसाधारण आग्रह समेत कलबाट। झुरुङ्गे पुल बनलपाछ बर्दिया राजापुर क्षेत्र कैलाली के टिकापुर क्षेत्र जोडलबा फे पुल के अवलोकन गर्दै दैनिक भारी संख्यामा आन्तरिक पर्यटकहरू फे पुग्न कलबाट। सुनसरकी देवानगंज गाउँपालिका 3 कप्तानगंजमा साउन 10 गते हुलक गोलीकाण्डमा गम्भीर घाइते हुलक रविन्द्र मेहताकी काठमाडौँमा उपचारके क्रममा निधन हुँदा गोली लागलपछ गम्भीर घाइते हुलक मेहताकी प्रारम्भिक उपचार विराटनगरमा कल रही उपचार सम्भव नै हुँदापछ उहाँ थप उपचारका लागि काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल टिचिङ अस्पताल रेफर गरिएल हो। उपचारके क्रममा उहाँ निधन हुलक पारिवारिक स्रोत उद्धृत गर्दै देवानगंज गाउँपालिका अध्यक्ष वेतन प्रसाद मेहता जानकारी दिलबाट। मेहताकी निधनकै खबरकै देवानगंज चौक कप्तानगंज क्षेत्रमा शोक छैलक अध्यक्ष मेहता बोटिलोबाट। स्थानीयवासी घटनाकी निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीकी उप कड़ा कार्यवाही गर्न तथा पीड़ित परिवारमा उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनमा कलबाट। स्थानीय विवेक मेहताकी अनुसार यही घटनामा मृत्यु हुन संख्या 3 पुगल रहलबा। खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछ फेरि विष्णुतिर विश्राम मुदायक रेडियो टिका फोर एफएम।
5: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से सुरु करल मने खर सिजार सेक्ल
6: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
5: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्त बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
7: यूपीबीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
9: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
10: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
9: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खट्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डी फोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
10: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
9: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772
11: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
10: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ब्याग प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008
0: सांसदकी सुनसरी ओतराई मध्ये पहिलो धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावकी सन्दर्भमा शान्ति स्थापनाकै लागि सरकार दीर्घकालीन सोच धर अपनाओ नागरिकके मनमा रलक त्रास हटेना विशेष पहल कडा अपनामा सांसदको जोड़ दिलबाट प्रतिनिधि सभाकी आजकै बैठकमा प्रतिपक्षीय दलकी सांसदको धनुषामा गृहमन्त्री सुदन गुरूङ कलक 13 बुन्दे सहमतिप्रति प्रश्न उठेती सरकारकै धर्म राज्यकी संवैधानिक चरित्र नागरिकता तथा धार्मिक संस्थागत सम्बन्धित विषयमा कोनो एकठो पक्षसँग केही कलक सहमतिमसे निष्कर्षमा पुग्न नसेकलक बोटेलोबाट बैठकमा सांसदको सरकारकी कमजोरीकी कारण तराई मधेसमा चारजना नागरिककी ज्यान गुमैला कति घटनाकी नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री हो गृहमन्त्री लेहेपर्ना हो घटनाकी निष्पक्ष छानकेलाक एक विश्वसनीय आयोग गठन गर्नमा कलबाट बैठकमा सांसदको भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी सुस्ता स्थित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको नेपाली नागरिक धमकेलाको भौतिक संरचना क्षति पुगेको विषयमा सरकारकै ध्यान आकर्षण गरेरबाट साउन 17 गते आइतबार सुस्तामा सादा पोशाक मैलक भारतीय एसएसबी के जवान हुक्र नेपाली भूमिमा प्रवेश कलक नेपाली बनेलक संरचना भत्केलको स्थानीय धम्कैलक विषयमा सांसद हुक्र सरकार ध्यान आकर्षण गरेलबाट सांसद हुक्र फे करिडोर अन्तर्गत पर्न ढेडो सिन्ठाममा पुल निर्माण हुने सेक्लक वर्षायाममा आउत जाउत रोकलक ब्रेमी हुक्र व विद्यार्थी अत्यावश्यक वस्तु के ओसार पसारमा समस्या सृजना हुल कति जाजरकोट सहित डोल्पा हो रूकुम पश्चिम के नागरिक संघ जनजीवन सहज बनेनामा कलबाट सांसद हुक्र चिकित्सा शिक्षा आयोगकी निर्देशक समयमा नियुक्त नै हुल क्यालेण्डर अनुसार आयोगीय परीक्षा समयमा हुन सक्लको एमएसए विद्यार्थी अभिभावक अन्यलमा फर्लकटी सरकार ध्यान आकर्षण गर्नबाट सांसद थुक्र पासपोर्ट लगायतमा सार्वजनिक सेवा लेना ठाउँमा नागरिकको लम्बा लाइन वैशापना समस्या बहरलकटी समयमा नै समस्या समाधान गर्नमा कलबाट अस्नाकबीच प्रतिनिधि सभाकी आज बैठकमा फेरि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद मधिलक भूमि सम्बन्धी विवाद स्पत अभिव्यक्ति सचेनामा कर्ती प्रतिपक्षीय उग्र विरोध कलबाट सभाकी आजकी बैठक शुरू हुई लगत प्रतिपक्षीय दल नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी श्रम संस्कृति पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी के सांसद थुक्रा उठलगी विरोध कलबाट गत जेठ 17 गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रतिनिधि सभा बैठकमा भारतकी भूमि नेपाल मफी मिसल सेफिया जवाब दिएल पाछ प्रतिपक्षीय उग्र उठलग विरोध कर्ती ऐतिरहलबाट ए समाचार संघ खोज खबर बरेल जनासे पहिले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फेर से एकचो टापुमा फेर चितुवा के आतंक अब थारुगामा हरेरी पूजा हुटी हरेरी पूजा के धानमा लग्न रोग किरा हट्न मान्यता दलपुर घटो के झुंगे पुल पुनः सञ्चालनमा भार अनुसार पुलमा आवजात गर्न निर्माण कम्पनी के आग्रह ओ कप्तानगंज घटना घाइते मेहता के उपचार के क्रममा मृत्यु लिटा बुकला खोज खबर तरह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद लिटिया बुकला खोज खबर से मैसिदा चौधरी विदाई टू एगार पांच छह बजे के खोज खबर सुन सी सामुदायिक रेडियो टीका प्रोडक्शन सुनती रवि राम राम
12: नरेश दादू मैं तो अपना फोन आई की जरूरती आ गई नो है भौजी कहाँ बाती
13: ऊ गोंदे में सुटल बाती बाबू चोली न भरी
12: भौजी कहाँ से काटू अपना हन हरक आदर पावे तो सफा सुखर बनाई लो बाती तर फिर पार्टी तो जा रहा ना अपना है ना
14: यहाँ पोली को पर कत लगो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटाई बेर मुको आप उमना हो
12: ना ते भौजी हमरा बाटी अपना है ना कुछ नहीं हुई बिन गुआरा है ना जिन से लेगी वो नरेश दादू एम्बुलेंस लेना तो मैं लागे से था नगर के कोई मोटरसाइकिल बाक ना ची वहीं मैं बैठा कर भौजी है ना सरपरल सा उपचार केंद्र ले जी ना तैयारी करो पड़ल
13: ये बेला तो खैला जात फिर दिए न्यू इट ना स्वयंसेविका दीदी
12: हो अपना ठीक कली डॉक्टर और निकट सम जरमेन कुछ से खवाई नहीं हुई
15: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए क्लास सपवा कटलक अंगाना स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक रुगा गरगहना घरी पेटी मुंद्री बाकर से पापर करा दी बेरमिया अक्टेले से जन समस्या बिना हुए कोशित बेरमिया न शांत रह सहयोग कर पठा क्यों मने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खबरना फिर कठा अशिक करने से रक्त संचार में समस्या हुई सकता जेहीले करबेल सपवा दशलक शरीरको भाग काट खफाक पाउन अवस्था थिए आइसक था
16: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो ओ सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा ह्यार सेट बिठा
17: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
18: सिधापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
19: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: कुनै प्रकारको रसायन केमिकल नमिसाइएको शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवनको अत्याधुनिक मिलमा उत्पादित शुद्ध तोरीको तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेडका प्रिमियम उत्पादनहरू।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, सञ्चालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
3: कार्यक्रम छोट मिठ साताके बुधबार दिनके एक बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
4: जब देखनो तो हिन है।
3: यदि मन परत हुई कले से अपन मनन सुनेना चाहती कले से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जनन के नाम अनिवार्य ले दी कले से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0915162555 साता के बुधवार दिन के एक बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: चलन रहेको छ। हरेरी पूजामा कृष्ण भगवान, गौरा पार्वती, पाँच पाण्डव, भीम लगायतको देवताको पूजा गरिन्छ। टिकापुर पाँच नुक्लीपुरका गुरुवा फुलराम चौधरी।
1: हरेरी पूजा नव दुर्गा पूजा हुए, कृष्ण भगवान के पूजा हुए, पाँच पाण्डव के पूजा हुए, गौरा पार्वती बरहो बर देवन की पूजा हुई। ये हरेरी कहना, हरियर गुरी कहना, हरेरी पूजा में इस जलनौती करनौती की जब ईश्वरा महादेव गौरा पार्वती उपरे खेती अंजाम करने खेती रसे लगने तब सारा चीज जुटे नहीं सब खेती अंजाम करने तो है ईश्वरा महादेव गौरा पार्वती खेती करे लगने वो है मारे वो ईश्वरा महादेव गौरी पार्वती होकर के खेती कर समय में महादेव ईश्वरा महादेव गौरा पार्वती खेती कर लेते भीम भूखाद के बरदीवा बनने भीम बनने महादेव बरदीवा महादेव बरदीवा बनने तो भीम तब जाकर भीम मेवा बनने भीम के छठ पूजा हो चिम नहीं एक कर रोटी पका के भीम के भक्खा लगा रहा हजूर इनमें खेती बाड़ी शेष के जब महादेव खेती बाड़ी हेरे जाए लग नहीं पानी खांडी हेरे जाए लगने तो ये बलहु बरदेवन मजूरी ले रहे थे बलहु बरदेवन मद्दती में ले रहे थे उस समय में बस महादेव गौरा पार्वती श्री महादेव गौरा पार्वती खेती अंजाम करने
0: सामूहिक रूप में थन्वा में पूजा करी सके गांव भरी का कृषक मंत्री को धूप र दूध पानी वितरण कर गांव का कृषक ने वितरण कर धूप र पानी आपने खेत को गरा में हालने चलन इसी पूजा कर धूप ले धुपाउने र दूध पानी खेत को गरा में हाल धान में लगने रोग किरा हटे जाने विश्वास रहेको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर आठ खैरीपुरका गुरुवा तेस्ना दङौरा चौधरी बताउनुहुन्छ।
2: यी दुध दाजा टप आगे सेवा गान्धी गुजी किरा काँटी हटाइन है खेतमा कबो गान्धी लाग्दै छ कबो गुभिया लाग्दै छ कबो कुछु लागत अब ये कोही दहिया रोग पक्रसकाले अब आगे दिन से परम्परा आगे दिन से यह स्थिति तो हमारे पुरखा देखि न छोड़ल धूप में उचल ये वहाँ का मंगरासक मऊ रही उछरवा धूप रही गैया घिउ रही
0: हरेरी पूजाले थारू समुदायमा एकता ल्याउनुका साथै मेलमिलाप सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सघाउँछ। परम्परागत पूजाले धान उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वास छ। धानमा किरा लाग्नबाट बचाउन र उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वासले हरेक वर्ष हरेरी पूजा गर्ने गरिएको टिकापुर चार बागमाराका जोखनलाल चौधरी बताउनुहुन्छ।
3: अब खास त के थारू परम्परामा हरेरी पूजा कार्य हरेरी पूजा कले धान लगाएन धान चाहिँ किरा काँटीमा लाग्ने धान चाहिँ मजाले चाहिँ धानमा दाना लागे त्यही चाहिँ पूजा त्यही खास हाम्रो थारू परम्परा अनुसार हामी चाहिँ प्रकृतिको पूजा हो। अब यो हाम्रो चाहिँ थारूमा किरा काँटी लाग्छ बर्खामा ज्यादा धान नोक्सान गर्छ बकायतलाई चाहिँ हरेरी पूजाको छो चाहिँ परम्परा बैठल हो अनुसार चाहिँ प्रत्येक वर्ष थारू समुदायको गाउँ घरमा चाहिँ हरेरी पूजा तर होइन चाहिँ जरुरी बात महिला
0: खेती गर्न सुरुवात गरेसँगै हरेरी पूजा गर्ने चलन चल्दै आएको छ। यसले गाउँमा रोग व्याधि नलागोस् र रोपेको धान लगायत अन्न बालीमा किरा नलागोस् भनी पूजा गर्ने गरेको थारू अगुवा जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर आठका जङ्गबहादुर चौधरी बताउनुहुन्छ।
4: हरेरी पूजा गर्न कहाँ हाम्रो पुर्खाको जान अनुसार जस्तो खेतमा धानमा गान्धी पूजा किरा लाग्छ वह किरा बारेमा दूध दरबोट नहीं लगता कहकर कसा का होना वह हिसाब से हमार पुरखा देखी आयल रीत हमार नहीं छोड़ना कहकर हरेरी पूजा पानी में दूध डाल के खेतों में डरना गलत पूजा कैली हम लोग दूध बना के बस अपन अपन गांव किसानों में ही दूध और जाके उम्र धूप आगी नान के खेतों बीच जाके बस आगे में धूप डरना धूप धुआं आई तो धुएं ना ऐसे ऐसे करना वो गहरा में पानी में अपन अपन खेतों गहरा में पानी डाल देना पानी डालने से खेतों हम मजा हुई मजा फलत करना हिसाब से डाल जाए।
0: हरेरी पूजा को दिन हरियो घास काट्न नहुने ढिकी जातो चलाउन नहुने मान्यता पनि रहेको छ। पूजाको दिनमा यस्ता क्रियाकलाप गर्दा अशुभ हुने जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर नौका मान बहादुर चौधरी बताउनुहुन्छ।
5: अब धानमा किरा लाग्छ ऊ दिनमा सब कुचाज बन्द गर्नु पर्न र ऊ दिनमा से मन्द्रा बजिना सब गान गन गर्न हो हरेरी गर्न दिनमा आजकल हरेरी नै गर्छ त आजकल मन्द्रा मन्द्रा नै बजाइदिए हरेरी महत्व धान मकै देवी देवतन के नै हो धान मकै जाके पूजा गर्दा
0: हरेरी पूजाको साँझतिर गाउँभरका पुरुष एक ठाउँमा जम्मा भएर सामूहिक रूपमा मादल बजाएर नाच्ने पुस्तौं पुस्तौंदेखि चल्दै आएको चलन छ। गाउँका मानिस मात्र नभएर गुरूवा र गुरूवासँग बस्ने केसुका गुरूवाको साथी समेत बस्ने गर्छन् र गुरूवा र केसुका मादलको तालमा नाच्ने गर्छन्।

0: বাবু, এ বাবু, কাল মনীষ মেডিকেল মে যাইস তো?
1: মই নাই যাই, উহাঁ আপন অনুহার বিগড় কে ঘর সে বাহির নাই নিকরছু।
0: উহে মারি তো তুহিন উহাঁ পাঠাই দো। ইহাঁ হেল ই পত্রিকা মে লিখাল বা মনীষ মেডিকেল মে আব ছালা সম্বন্ধী সমস্যা রহল বিরামী হুকন বড়িয়া ডাক্তার হইছে উপচার হুইতা ওই তোর সমস্যা ফেন আসতে বা যাইবে তো সমাধান হই যাই।
1: এ হো দাদু, অপন অনুহার বিগড় কে পরিশান রহু, তব তো মই অব্যহি যাইম।
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: टीकापुर नगरपालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जाइब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बातू मिलबो नी करत का कहना हो का
1: मिस्तरान बर्जन का घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना उट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।

0: बुका पी रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनंद झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में, रख गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: बाढी पहिरोले प्रत्येक वर्ष नेपालमा धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ, त्यसैले बाढी पहिरोको समय अगावै समुदायमा जनचेतना जगाउने र न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउनु पर्छ।
4: जोखिम स्थलको पहिचान तथा पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।
3: सुरक्षित स्थानको पहिचान र सो स्थानमा जान सकिने बाटोको पहिचान गरिराख्नुपर्छ।
4: एकोहोरो लामो समयसम्म वर्षात भयो भने पहिरो तथा बाढ़ी जान सक्ने क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ र सचेत रहनुपर्छ।
3: बाढ़ी आइहालेमा घरको विद्युत लाइन तुरन्तै बन्द गर्नुपर्छ।
4: सुक्खा खानेकुरा, औषधि, प्राथमिक उपचार सामग्री, बहुमूल्य गहनाहरू र आवश्यक कागजातहरू लिएर तुरन्तै अग्लो तथा सुरक्षित स्थानमा जानुपर्छ।
3: सुरक्षित स्थानमा जाँदा घरको झ्याल ढोकाहरू राम्रोसँग बन्द गर्नुपर्छ।
4: यस्तो अवस्थामा वृद्ध, केटाकेटी, अशक्त तथा गर्भवतीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।
3: विपदको घटना भएमा तत्काल रेडक्रस तथा सुरक्षा निकायलाई खबर गर्नुपर्छ।

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम एक सय एक मेगाहर्ज
1: कार्यक्रम छोट मिठ साता के बुधवार दिन के एक बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
2: जब देखनो तो हिन है
1: यदि मन परत कल से अपन मनन सुनेना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी सुनने का ना दे 5612655 साता के बुधवार दिन के एक बजे जरूर डायल करे हुई कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दन्त रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला
3: आफूले सञ्चालन गरेका व्यापार व्यवसाय आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता नवीकरण गराई कर तिरौं र सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ
4: कर नतिरी व्यापार व्यवसाय गर्नु कानून विपरीत हो व्यवसाय दर्ता नवीकरण नगर्ने र कर नतिर्ने नागरिकलाई वडा कार्यालयबाट दिइने सेवा सुविधा प्रदान गरिने छैन
3: टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश

महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी ने बताओ ऐसे प्रसंग को बीच में अब यो विश्व ब्रह्मांड उत्पादन को विषय को लाई प्रश्न गर्नु भएको छ भगवान यो विश्व ब्रह्मांड कसरी उत्पादन भयो यसदेखि पछाडिबाट सृष्टि को प्रकरण में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र यो चार जात को प्रकरण में व्याख्या गरेको छ भिन्न भिन्न मत को प्रभाव बाट यिनको विषय में पनि केही प्रकाश पारिबक्सन्छ कि भनेर विनती गर्ने वडा राजा परीक्षित लाई सुखदेव स्वामी ने बड़ा गंभीर वाणी में आपको भाषा प्रस्तुत करते हुए सम्मान को कथा यह सज्जा जय बोलो श्रीमद भागवत महाप्राण को